0: आज माजी भी हाथ आदत मना मंजर कावरिया कुकुना करना कावस्ता ना केनु करना आज माजी केनु माजा आजी आदत ने करी काब सरदा गंदगी ना तेरी हो मेरी नाली गाली ना लाचे जो मुझे मुझे मारता वो
1: Thank you.